त्याय फल तेवे हो पाइये देवे हिकार कमाइये जे हो वै पुरख्या रातुर्ति नाथ पाइये मत थोड़ी सेव गवाइये मत थोड़ी सेव गवाइये।

फुरमत तिसने उगलियो वजो पे दुना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैर तंद्र पाए बजो गवाए अगला मोहे मो पान खाए जिस दा तखाव न तिसकी ये सबास नानक हुकुमत ले नाल।

जगद्गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरु हे शरण जोग दयाल है दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय स्मरंत नानक राम दमोदर माधव सो कहो टल गुरु सेवी है एहन ससहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए

जियो सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो कबीर जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार जंत बिचारा क्या करे चले बजावन हार कबीर साकत की कुकर पल कबीर वैष्णो की कुकर पली साकत की बुरी माए ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बिसाहण जाए बेशुमार अथा अगणत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै गुरु गरीब नवाज सर्व सांझी वालता दे उपदेशक बाणी के बोहे थो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी

0: सो सच्चा हर जान।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
0: राम कलीमा ला तीजा आनंद एक ओंकार सत गुर प्रसाद। आनंद भया मेरी महाए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ना पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईयां, शब्द उतां गावोरी केरा मन जनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सुधारो अरनाले, अरनालो तू मन मेरे दू सब सारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सुधारो अरनाले, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे। हर तां तेरे सब किश है जिस दे सो पावे, सदा सिफ सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु वेटो जिस दियां ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द तित घर सपाग्या, घर सपाग्या शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत दवस किते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम अर कहलागे। कहे नानक तै सुख हो तित कर आनंद वाजे, आनंद सुनोवड़ पागी ओ सकल मनोरथ पूरे। बार ब्रह्म प्रभ पाया तुरे सकल बसूरे, दुख रोग संताप तुरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी,

गए मशकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती सहाय।

कुंचरयस फूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर बछन्ने, घड़ घड़ के पड़ पड़ की जन्ने, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजाथर्त तव देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब थारे, आप आपणी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत भेद भेद अर आलम। ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीन अनाद संभ। ताका मोड़े उचारत बेदा, जाको भेव न भावत बेदा। ताको कृपाण अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहे सदा शिव, ड्रंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनुपस रूपा, रंग भयो राव कहीं पूपा। अंडा जेरा से तज कीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी। कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमड भयो शंकर अकैठा। सगरी सृष्ट दखाए अचंभव, आजुगा स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पत्ता, सकल मलेच्छ करो रणगाता। जे आस तुझे तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख्त हवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को इक बार ते है, ताकि काल निकट न है। रक्षा हुए ताही सब कला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तान जाहे न हरिओ, ताकि ताप तनक मैं हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फांसती तहें उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्टि दोख तेरा। खड़ग के मैं शरण तिहारी, आपो हाथ दे लेहो ओवारी। सरठो मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो ओवारी। सरठो मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे, जब ते तुम्हारे तब ते को आंख तर नहीं आने। राम रहीम प्राण कुरान,
अनेक है मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद स्वभाय बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो, सब तो ही बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छे गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार सगल द्वार कौ छे गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार। राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अनंत भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता बाया सह सेती मन वजिया वधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया, शब्दो तंगाबो हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना, सवना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो मसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, सचे साहेबा क्या ना ही घर तेरा, करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसा भये, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द गनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, सचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा। जैनो भुखा सब गवाइया करशां सुख मन आए वसिया, जैनो इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया एह बड़ियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे। कह नानक तस कहोआ तित हर अन्ना हद बाजी, आनंद सुनो बड़े भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया। उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे। पूरे गोरते जानी सुनते पुनी कहते पवित, सतगुर रहा भर भूरे
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਾਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਭੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤਿ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸਕਾ ਸਭਸੇ ਅਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ

तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

परमेश्वर बणत बनाई फिर डोलत कतू नाही आगे सुख मेरा मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बणत बनाई

परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा च गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुर इतिहासिक विचार धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे पावन इतिहास के नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नू एकागर करते हुए निमाणे जे होके समरथ सतगुरु जी के पावन चरणा च जुड़न का यतन करिए। सभना दियां हाजरियां सतगुरु महाराज के पावन चरणा च लग जान। आप जी रोजाना इस अस्थान तो श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे राही कवि संतोख सिंह जी दे द्वारा दशमेश पिता सरबंस दानी अमृत के दाते बादशाह दरवेश शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन इतिहास नूं लड़ीवार सरवण करते आ रहे हैं। गुरु महाराज के दरबार के विच सिख संगतां श्रद्धा भावना दे नाल आ करके जुड़दियां हन। सतगुरु महाराज जी गुरमत का उपदेश देंदे ने और बाणी दे नाल जोड़ रहे ने। बेअंत सिख संगतां आ के गुरु महाराज के चरणों विच जुड़ के मनुखा जन्म का लाहा जो है वो प्राप्त कर रहे ने। पिछले इतिहास के विच आप जी ने सरवण किया कि भाई आनंद सिंह तिन्हां दे मां बाप गुरु महाराज जी दे कोल लै करके आए। सतगुरु महाराज ने जदों अध्यात्मक अवस्था देखी कि यह तन का बैरागी नहीं यह मन का बैरागी है। जो एक दुनिया का एक सच है वह समझ दे विच आ गया कि जेड़ा भी इस दुनिया दे विच आया है उन्हें एक दिन जाना है। जन्म ता मरना जन्म है ता मौत भी है पर जदों इस जहान तो असी जाना ये शरीर भी नाल नहीं जाना और माया भी पदार्थ भी नाल नहीं जाने। इसलिए प्रेम परमेश्वर दे नाल होना चाहिए। साड़ी जड़ी प्रीत है वो पदार्थां दे नाल नहीं साड़ी प्रीत दाते दे नाल होनी चाहिदी है। गुरु महाराज ने फिर भाई आनंद सिंह नूं जो लगभग 18 साल की उम्र है अपने कोल आनंदपुर साहब महाराज जी ने रखिया। सतसंग दे विच जुड़ना सेवा करनी शस्त्र अभ्यास करना और महाराज नाल नाल उपदेश दे के भी समझाउंदे आ। अगले उपदेश विच गुरु महाराज जी की समझाउंदे भाई आनंद सिंह दे नाल नाल असीं भी सारिआं ने गुरु महाराज का उपदेश सुन के उहदे ते

माता लोई जी है और उन्हां दा परिवार है, बच्चे ने, कहिंदे ने गृहस्थ विच रह के उन्होंने सिद्धियां पा लईयां, कामयाबियां पा लईयां। अज गुरु ग्रंथ साहब च बैठे हैं ना, और अज भगत कबीर साहब जी का जन्म दिहाड़ा भी है। आप सारिया संगतां नूं बहुत बहुत मुबारकां भी ने। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी कबीर साहब का जिक्र किया है, समझा रहे ने भाई आनंद सिंह नूं, कहिंदे ने भगत ये नहीं कि परिवार छड़ के कोई भगत बनता है, कोई जोगी बनता है, ये नहीं कि परिवार छड़ के बनता है, परिवार विच रह के असी कामयाबियां सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। असी परिवार विच गृहस्थ विच रह के अपना मनुखा जन्म सफला कर सकते हैं। परमार्थ की दुनिया के विच असी इस मार धर्म की पौड़ी ते पैर रख के चल सकते हैं। सतगुरु महाराज जी कहिंदे ने श्रोमणी भगत कबीर साहब नूं ही आपां लै लईए, गृहस्थ कर उन्होंने परिवार कर जिहड़ा बना के गृहस्थ जीवन विच रहिंदियां होइयां अपनी सुरत निरंकार नाल जोड़ी है। जिवें भगत साहिबान दी बाणी विच कहिंदे आ, हाथ पाऊं कर काम सब चीत निरंजन नाल, किरत करो अपनी परिवार विच रहो पर चित तुहाडा निरंकार नाल जुड़िया हो, मोह नहीं होना चाहिए, प्रेम पाओ सारिया नाल, इस कुदरत नाल प्रेम करो। असी मोह नहीं पाउणा, असी प्रेम पाउणा है। कुदरत विच ही कादर वसदा है, हर एक जी विच वह वसदा है, हर एक जी दे नाल प्रेम करो। पर जिन्हां नूं यह गल समझ नहीं आई उन्होंने नफरत फैला दित्ती, उन्होंने वंडियां पा दित्तियां, वंडियां पा के नफरत फैला दित्ती। असी कुदरत नाल प्रेम करना सी पर प्रेम दी जगह साडे अंदर नफरत भर गई। कबीर साहब जी दे समय जिहड़े धर्म दे पुजारी है वह कबीर साहब नूं मंदिर दे अंदर ही नहीं आउण दिंदे, उह कहिंदे तू ते जुलाहा है, तू मंदिर दे विच नहीं आ सकदा, असी ब्राह्मण हाँ, असी उच्च जाति दे हाँ। कबीर साहब जी कहिंदे आ वी असी मैं ते तू दोवां च किवें फर्क हो गया भी।

मनराय फुलंत ज्योति कैसी आरती हुए पवखंड ना तेरी आरती अनता शब्द वाजंत भेरी रहाऊ सहस तब नैन नैन है तोहे को सहस मूर्त न एक तोहे सहस पद वे मलन एक पद गंधबिन सह तब गंधिव चलत मोहे सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिस दै चानण सब मैं चानण होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस भावै सो आरती होए हर चरण कोलम ग्रंथ लोभित मनो वंदनो मोए आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को आते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध कृपा भरिया मिल साधु खंडल खंडाए पूर्व लिख लिखे गुरु पाया मन हरलि मंडल मंडाए कर साधु अंजलि बन वड्डा है कड्डन डोत बन वड्डा है रहाओ साकत साधना जाने अदरंतरो मैं कंडा हे ज्यू जो चलै चवैदुक पावै जमकाल सहसे डंडा हे हरजन हर नाम समाणे दुख जन मंड भव खंडा हे अविनाशी बरक पाया परमेश्वर वसोभ खंड ब्रह मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख रख वडोडा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इं घर चलो हर लाया गै बसंसे लाया उत्कट है दिन सरणारे मन गुर मिलका सवारे रहाओ हे संसार बेकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावै ए रस कथ कथा दिन जानी जा को आए सोई बेहजो हर गुरते मने बसेरा निज कर मैल

0: सचे पातशाह नानक सच सन सच जो मर्ज में सुख कछ मिला पहला
1: वड्डी वड्डे जा वड्डा।